तो प्रखंड रंजन हर प्रखंड रंजन हर अगमा अगमा पारा सब क्या बहे सब क्या बहे तुर जी हर सच्चे सिर जनहारा सब जी तुम्हारे जी।

मान एक न चेत समूढ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया ना हो जति सदी नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक जन्म।

सूबेदार लाहौर जकरिया खान ने फौजदार जलालुद्दीन नु हुक्म दिता है कि तमाम फौजी दस्ते लेके सिंघा रुख करके साडे सामने जिंदा पेश करो। जलालुद्दीन सैकड़िया की गिनती दे विच मुगल सिपाही लेके मारो मार करता होया नूरदीन दी सरां वल वध पिया। उधर सिंह सूरमे भी गैरी की उड़ीक कर रहे सन। इधर सिंह शेरां दे कोल केवल डांगा ते तलवारां ते उधर जलालुद्दीन की फौज तोपां ते गोलियां दे नाल बंदूकां दे नाल लैस। फौजदार जलालुद्दीन ने आके बोता सिंह जी नूं कहा कि यह बोता सिंह टाकरा करन दा हुण कोई फायदा नहीं होना, सियाण तो कम लै ते सरकार दी ईन मान लै। भाई बोता सिंह जी ने जवाब दिता, जलालुद्दीन असीं अपनी जान बचाण वास्ते नहीं सगों अपनी जान वारन दे वास्ते काम कीता है। असीं सोचिया कि थानू जालमां नूं भुल ना जावे कि सिंह सूरमे जुलम दा टाकरा करन दे लई हर वक्त तैयार वर तैयार ने, इन्हां नूं तुसीं कदे खत्म नहीं कर सकदे। हां जे तूं साडी बहादुरी वेखनी चाहुंदा है तां अपनी फौज दे विचों चार चोणवे जवान साडे टाकरे च भेज। जलालुद्दीन ने चार चोणवे सिपाही सिंघां दे टाकरे वास्ते भेजे ने। इधर सिंघां शेरां ने ऐसा हल्ला बोलिया पहले वार दे विच चारां नूं मुका दिता। उस तो बाद जलालुद्दीन ने शेर भेजे ने, ओह भी बहुता चिर सिंघां दे अगे अड़ नहीं सके। फौजदार ने फिर जदों अठां नूं अगे वधन वास्ते हुक्म दिता तां सिपाहियां ने कहा कि यह फौजदार तूं दो दो चार चार करके इदां ही सारी फौज दा काम करवा देना है। तां जलालुद्दीन ने सारी फौज नूं इकदम इकट्ठियां दोनां शेरां ते हल्ला बोलन दा हुक्म दे दिता। इधर दोवां सिंघां ने कंधां जोड़ लईआं ने। उधर मुगल सिपाही टुट के पै गए ने। इन्हे तलवार दे वारां दे नाल जिस तरह लोहे ते लोहा टुट रहा उस समय दे दृश्य नूं ढाडी जथाबंदी सेवा विच के

गुरु प्यारी साध संगत जी, एक सोचना है, गड्डी नंबर 610 SEA इसकी लाइटा ऑन ने, कृपा करके जिन्हां दी भी गड्डी है वो ख्याल कर लेना।

जिचर गुरमुख शब्द ना लागे सतगुर सेवे नाम मन वसे विचों भ्रम पौ भागे जेहा सतगुरु नो जाने ते हो सच नाम लिव

0: नानक नाम निदान है गुरमुख पाया जाई मनमुख घर हुंदी वत न जाननी अंधे भौंक मुए बिललाए महला तीजा कंचन काया निर्मली जो सच नाम सच लागी निर्मल ज्योत निरंजन पाया गुरमुख भ्रम पौ भागी नानक गुरमुख सदा सुख पावह अन दिन हर बैरागी पौड़ी ते गुरसिख धन धन है जिनी गुर उपदेश सुनिया हर कन्नी गुर सतगुर नाम दृढ़ आया तिन हों मैं दुबदा भन्नी बिन हर नावै को मित्र नाही
1: विचार दिता हर जनी
0: जिन्ना गुरसिखा को हर संतुष्ट है तिनी सतगुर की गल मन्नी जो गुरमुख नाम ते आए दे तिन चढ़ी चवगण वन्नी सलोक महला तीजा मनमुख काय तुरूप है बिन नावै नक नाही अन दिन धंदे व्यापिया सुपने भी सुख नाही नानक गुरमुख हो

गुर का शब्द कमाए अंतर शांत सदा सुख दर सच्चा सुबा पाए नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाए पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई गुरमुख वशिष्ट हर उपदेश सुनाई बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई गुरमुख हर भगत हर आप लहाई श्लोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत ना आईया शब्द ना लागो भाव उस नो सुख ना उपजै भावे सौ गेड़ा आवो जाओ नानक गुरमुख सहज मिले सच्चे स्यों लिवलाओ महला तीजा ए मन ऐसा सतगुरु खोज लहो जित सेवे जन्म मरण दुख जाए सहसा मूल ना हो वही हूं मैं शब्द जलाए कूड़ै की पाल विचों निकले सच वसै मन आए अंतर शांत मन सुख होए सच संयम।

गाई। नानक वेख विगसिया हर सच्चे की वड्याई पौड़ी। इनकै हर नाम वसिया सद हिरदै, हर नामो तिनको रखण हारा। हर नाम पिता हर नामो माता, हर नाम सखाई मित्र हमारा। हर नावै नाल गल्ला, हर नावै नाल मसलक। हर नाम हमारी करदा नित सारा। हर नाम हमारी संगत अत प्यारी। हर नाम कुल हर नाम परवारा। जन नानक कौ हर नाम हर गुर दिया। हर हलत पलत सदा करे निस्तारा। श्लोक महला तीजा, जिन कौ सतगुर भेटे।

पार ब्रह्म तिनको संतुष्ट भया जो गुर चरणी जन पाए। जन नानक हर का दास है कर कृपा हर लाज रखाए। महला तीजा हम मैं अंदर खड़क है खड़के खड़क विहाय। हम मैं वड्डा रोग है मर जमै आवे जाय। जिनको पूर्व लिखिया तिन्ना सतगुर मिलिया प्रभ आए। नानक गुर प्रसादी उभरे हम मैं शब्द जलाए पौड़ी। हर नाम हमारा प्रभ अवगत अगोचर अविनाशी पुरख बिधाता। हर नाम हम श्रेव हैं हर नाम हम पूज्य हैं। हर नामे ही मन राता हर नामे जेवड़ कोई अवर ना सूझे। हर नामो अंत छडाता हर नाम दिया गुर पर उपकारी। तन तन गुरु का पिता माता।

मनमुख अंब ना चेतई, चित आया सह सार। नानक जिनको नदर करे, से गुरमुख लंगे पार। महला तीजा, इको सतगुर जागता, होर जग सूता मोह प्यास। सतगुर सेवन जा गन से, जो रते सच नाम गुणतास। मनमुख अंध ना चेतनी, जन्म मर होहे विनाश। नानक गुरमुख तिन्नी नाम त्याया, जिनको तुर पूर्व लिखे आस पौड़ी। हर नाम हमारा भोजन छत्ती प्रकार, जित खाया हमको तृप्त भई। हर नाम हमारा पहनन, जित फिर नंगे ना होवै। होर पहनन की हमारी सरद गई। हर नाम हमारा वणज,

जान गई। हर का नाम गुरमुख किन विरले त्याया, जिनको तुर कर्म प्राप्त लिखत पई। लोक महला तीजा, जगत अज्ञानी अंध है, दूजे भाई कर्म कमाए, दूजे भाई जेते कर्म करे, दुख लगे तन धाए, गुर प्रसादी सुख उपजे, जां गुर का शब्द कमाए, सच्ची बाणी कर्म करे, अन दिन नाम त्याए, नानक जित आपे लाए तित लगे, पहना किशु ना जाए। महला तीजा, हम घर नाम खजाना सदा है, भगत भरे भंडारा, सतगुरु दाता जी का सद जीवै देवनहारा, अन दिन कीर्तन सदा करह, गुर कै शब्द अपारा, शब्द गुरु का सद उच्च रह, युग युग वरतावन हारा, इहो मनुआ सदा सुख वसै, सहजे करे वापारा, अंतर गुर ज्ञान हर रतन है, मुक्त करावन हारा, नानक जिसनो नदर करे सो पाए, सो होवै दर्श चियारा पौड़ी, तन तन सो गुर सिख कही है, जो सतगुर चरनी जाए पया, तन तन सो गुर सिख कही है, जिन हर नामा मुख राम कहया, तन तन सो गुर सिख कही है, जिस हर नाम सुनिया मन आनंद भया, तन तन सो गुर सिख कही है, जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया, तिस गुर सिख कौ हौ सदा नमस्कारी, जो गुर कै पाण गुर सिख चलिया। श्लोक महला तीजा, मन हट किने ना पायो, सब थके कर्म कमाए, मन हट भेख कर भरम दे,

जिन उपाए जी तिन हर राख्या, अमृत सच्चा नाव भोजन चाख्या, तिपत रहे आघाए मिटी पपाख्या, सब अंदर एक वरतै तिने विरलै लाख्या, जन नानक भय निहाल प्रभ की पाख्या।

ना हो गई। जिचर शब्द ना करे विचार, हम मैं मैल ना चुकई, नाम ना लगे प्यार। एक आपे बख्श मलायन, डुबदा ताज विकार। नानक एक दर्शन देख मर मिले, सतगुर हेत प्यार। महला तीजा, सतगुरु ना सेवे मूर्ख अंध गवार। दूजे भाई

0: हर दिन कोई मार जीवाल ना सके।
1: मन होए निचिंद निसल होए रही है, उठदियां बहदियां सुतियां सदा सदा हर नाम ते आई है।

जे गुण होन ता कटियन ते भाई से वीर अगे गए ना मनियन मार कढ़ो होवे पीर। सोठ महला पहला कर पहला मन हाली किरसानी करनी शर्म पानी तन खेत नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेस पाओ कर्म कर जमसी से कर भागठ देख बाबा माया साथ ना होए इन माया जग मोहया विरला बूझै कोई रहाओ आन हाथ कर आर जा सच नाम कर वाथ सुरत सोच कर भांड साल तिस विच तिसनो रख वणजारिया स्यो वणज कर लै लाहा मन हस सुन सासत सौदागरी सत घोड़े लै चल खर्च बन चंगियाइया मत मन जान है कल निरंकार कै देस जाहे ता सुख लह महल लाए चित कर चाकरी मन नाम कर कम बन बदियां कर धावनी ता को आखै धन नानक वेखै नदर कर चढ़ै चवगन वन। सोठ महला पहला चौतुके माए बाप को बेटा नीका ससुरै चतर जुआई बाल कन्या कौ बाप प्यारा भाई कौ अत भाई हुक्म भया बाहर घर छोड़िया हिन मह भई पराई नाम दान इशनान ना मन मुख तित तन धूड़ तमाई मन मानिया नाम सिखाई पाए परहु गुर कै बलिहार जिन साची बूझ बुझाई रहाओ जग स्यो झूठ प्रीत मन भेदया जन स्यो वाद रचाई माया मगन एहन समग जो है नाम ना लेवै मरै बिख खाई गंदन वैन रत्ता हित कारी शब्दै सुरत ना आई रंग ना राता रस नहीं भेदया मनमुख पत गुआई साध सभा मह सहज ना चाखिया जिह रस नहीं राई मन तन धन अपना कर जानिया डर की खबर ना पाई अखी मीत चलिया अंधियारा घर दर दिसै ना पाई जम दर बादा ठोर ना पावे अपना किया कमाई नदर करे ता अखी वेखा कहना कथन ना जाई कन्नी सुन सुन शब्द सलाही अमृत हृदय वसाई निरभउ निरंकार निरवैर पूर्ण ज्योत समाई नानक गुरविन भरम ना भागै सच नाम वडे।

इकत रूप फिरह परछन्न कोई ना किस ही जेहा अंडज जेरज उत्पुज सेतज तेरे कीते जनता एक पुरब मैं तेरा देखिया तू सबना माहे।

कहो परम तंत मलाया, नानक शरण तुम्हारी तोरठ महला पहला। ज्यों मीना बिन पानी है त्यों साकत मरै प्यास, त्यों हर बिन मरिया रे मना जो बिरथा जावे सास। मन रे राम नाम जस ले बिन गुर एहो रस क्यों लहो, गुर मेला हर दे रहाल संत जना मिल संगति गुरमुख तीरथ होए। अठ सठ तीरथ मजना गुर दर्श प्राप्त होए, ज्यो जोगी जत बाहरा तप नाही सत संतोख। त्यों नामै बिन देहोरी जम मारै अंतर दोख, साकत प्रेम ना पाईऐ हर पाईऐ सतगुर पाए। सुख दुख दाता गुर मिलै कहो नानक सिफत समाए।

गुरमुख एक दृष्ट कर देखो हो, घट घट जोत समोई जियो, चल तो ठाक रखो हो घर अपने, गुर मिले ए मत हो जियो, देख अदृष्ट रहो बिस्मादी, दुख बिसरे सुख हो जियो, पीवो हो अपयो परम सुख पाई है, निज कर वासा हो जियो, जन्म मरण भव भंजन गाई है, पुनरप जन्म ना हो जियो, तत् निरंजन जोत सबाई, सोहं भेद ना कोई जियो, अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर, नानक गुर मिलिया सोई जियो, सूरत महला पहला घर तीजा, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, जां तिस भावां तद ही गावां, तां गावे का फल पावां, गावे का फल होई, जां आपे देवै सोई, मन मेरे गुरबचनी निद पाई, तां ते सच मैं रहिया समाई रहाओ, गुर साखी अंतर जागी, तां चंचल मत त्यागी, गुर साखी का उजियारा, तां मिटिया सगल अंधियारा, गुर चरणी मन लागा, तां जम का मार्ग भागा, भै विच निरभउ पाया, तां सहजै कै घर आया, पणत नानक पूजै को बिचारी, इस जग मह करनी सारी, करनी कीरत होई, जा आपे मिलिया सोई, सोठ महला तीजा घर पहला, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, सेवक सेव करह सब तेरी, जिन शब्द साध आया।

0: धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज साढ़े सौ साल का हिसाब दसते ने गुरमुखो, दस बाल तन बीस रावण तीसा का सुंदर कहावे। ते बी तो तीस साल जेडी दस साल का समय उदो रब की गल गुरमुखो, नहीं नहीं उदो तो जग नहीं दिखता ते रब किथे दिख। तारण तेज जोबन का जोश उदो तो होर तरह की गल आ जाती है। हर पिंड है गए अजे, हर संपदा है गए, कि गल करने वाले ऐसे पटियाले भी कई हो गए। वो कहने हो गए जे मैं पटियाले ना जमदा खोरे पटियाला नाभे ही चले जाता खो सद है गल बी। तो साड़ी कौम भी तो ज्यादा ही जम पे, साड़ी कौम भी तो छत्ती डाला चक्की फिर कहते मैं ना जमदा पंथे नहीं था बचना बचाए मिलने। मेरे वर्गा भी हरदेव सू कहना होना गिटिया तक चोला पा के हरदेव दया जे तू ना आंदा इतने ढोलकी होनी सी बचनी इतने कीर्तने। वो तो वो दिन ने भी तो तीस साल तक सार आप सर ना पछाने, रस्ते कुरस्ते का पता ही नहीं, गिले सुखे का पता ही नहीं, जित हार का पता ही नहीं। गुरसिख तीस साल बीत गए। लाहौर गुरां ने एक गल लिखी है गोपत गुरमुखो, वो समझ लो प्यार नाल सतगुरु। आपां तां जदों कोई बंदा चढ़ाई कर जावे ना उदों कहने ना पूरा हो गया, पहला तो नहीं कहते। तो गुरु ग्रंथ साहब जी ने कदों कहा बंदा कदों पूरा होंदा? महाराज कहते चालीसी पुर होए तन गुरु ग्रंथ साहब कहते बंदिया जिदन तू चाली साल का हो गया उदन पूरा हो गया। आखो ऐसे चढ़ाई करे तो पूरा होया कहने, पर सतगुरां तो पूछो कदों पूरा होंगे। महाराज कहते जिदन तू चाली साल का हो गया ना उदन पूरा हो गया। क्यों हो गया पूरा? पग खिस है पचासी, चाली साल तक शरीर की ताकत वधदी है, जदों इकताली में लग जाए तो गुरमुखा तो उतरना शुरू हो जाने। चाली साल तक पूरा हो रहा दुख सोना सी, फिर टीके लवाई जाए, घी खाई जाए, दुध पी जाए। हूं तो दुध की डॉक्टर पहले ही बंद कर देने, हूं तो 18 साल के मुंडिया ही बंद है। पर 40 साल तो बाद जिन्नी मर्जी खुराक खाई जाएगी तेरी ताकत वधनी नहीं घटनी शुरू हो जाए। महाराज कहते जिदन तू 40 साल का हो गया गुरमुखा हो गया पूरा, जिनी चढ़ाई चढ़नी सी चढ़ लिया। ते पग खिस है पचासी, पैर का खिसकना की होंदा पंजाबी की गल है, पौड़ियों तो पैर खिसक जावे तो हेठू ही आऊगा तो उपरू थोड़ा जाने। वट वट तुरे जाने हो तो पैर खिसक जाए हेठू ही जाओगे ना। जदों तेनों 41वां साल लग गया सतगुर कहते तेरी उतराई शुरू हो गई, बस चढ़ लिया जिन्ना चढ़ना। तो खिसकदा खिसकदा उतरदा उतरदा किथे पुजया तू? सच्ची के बुढ़ेपा आवे, 40 साल तक चढ़दा चढ़दा ऊंचाई गया ते 60वें साल तक उतरदा उतरदा किथे आ गया? जार आई जोवन हारे, जार आई। थोड़े घर की गल है जे सोच लो थोड़ी जी, जार बुढ़ेपे नू कहने ना, जार नाम है बुढ़ेपे का। जार आ गई बुढ़ेपा आ गया ते जोवन हार गया जवानी गई। और गुरमुखा जार शब्द नू समझ तेरे घर विच पई है। वो जार ता लोहे दे गाटर नू लग जावे उनू छाण दिंदी है तू कौन होने अज के आखो सतनाम। जार ता
1: ਕੇਲਬੋ ਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FM ਰੇਡੀਓ CISK 94.3 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮ ਸਲਿਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

शांत मरकर जाए शांत गड़बड़ हत्या कमाए शांत पापी पाप कर जाए अशांत कूड़े आर कूड़े फिराही अशांत मलेश मल पा सहाय अशांत नियंत्र।

का तू दया दत्त दान, जीको पावे दिल का मान। सुनिया मनिया मन कीता भाऊ, अंतर गात तीर्थ मन नाओ। सब गुण तेरे मनाही कोई, मन गुण कीते भगत नाओए। स्वास्थ्य आत बाणी बरमाओ, सत सुहाण सदा मन चाओ। कवन सुबेड़ा बंत कवन, कवन सिट कवन वार। कवन से रुचि महाकवन, जित आकार। न पाइया पंडती रे गले पुराण, वक्त न पायो काटिया जे लिखा ले पुराण। हित वार न जोगी जाने, रुतमा न कोई। जा कर दासर ठीक कर साजे, आपी जाने सोई। जब कर आखा जलसा लाई, जावर ले जब जाना। नानक आखन सब को आख, एक दू एक सियाना। बड़ा साहिब वड्डी नाई, कीता जाता हो गए। नानक जे कहो आपो जाना, अगर दया न सोए। पाताला पाताल लख, आगासा आगास। रूल कूल कपाल सचे, वेद कहन कवास। सैस अठारह कहन कतेबा, सलू एक धात। लेखा हुई गली की है, लेखा हुई विनाश। नानक वड्डा आखी है, आपे जाने आप। सालाही सालाह, इति सुरत न पाई। नदियां आत वाह पवे, समुद्र न जानी।

कलंकं बिना निकलंक स्वरूपे नमो राजराजेश रंग परम रूपे नमो योग योगेश रंग परम सिद्धे नमो राजराजेश रंग परम हृदय नमो शास्त्र पाणी नमो अस्त्रणी नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता देखिए परमीय भोगिय भुगते नमो योग योगेश रंग परम भुगते नमो नित्य नारायणे गुरु धर्मे नमो प्रेत प्रेत देवेश धर्मे नमो रूपार्ता नमो राजे नमो शाह नमो पूर्वे नमो दान दाने नमो मन माने नमो रोग रोगी नमो संघनाने नमो मंत्र मंत्र नमो यंत्र यंत्र नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सचिदानंद सर्व करुणाशी अनुपे रूपे समाप्तवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा प्रतिकर्ता अदु उर्धर्दंग अगंगोहर्ता परं परं परमेश्वरं प्रोजपालं सदा सर्वदा सिद्धदा का दयालं अशेदीय पेदीय नामं कामं स्वास्तु ब्राजी समाता सुदामं तेरा जोर जाजरी शंद जले हैं खले हैं पीता गया प्रभुआ जीवा देशा देशाएं प्रियंग पर आज शंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्व मान्य समाज के नाने नमा तुम नरनाथे नमा तुम परमाते नमा तुम गंगे नमा तुम पंडे नमा तुम काले नमा तुम पाले नमो सर्व देशे नमो सर्व देशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो गीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्वजीतंग नमो

अनंगी अनामे तरभंगी दरकामे नर भंगी स्वरूपे सरभंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताता न माता न जात न पाता नर साकं श्री का मित्रो मी कहे प्रवाह जय जाहे भगवती शांत कर प्रसाद जहर जहूर है कि हाजिर हजूर है हमेशा सलाम है समा गुल गुलाम है कि सब दिमाग है कि उसमें चिराग है कि कामल करीम है कि राज करीम है।

गणी मुलक राज है, गरीब नवाज है, हरि पुलिस गण है, रास पुलिस कन है, कलंक प्रणाश है, समाल कुल नवास है, कंजल गुनीवर जाय करी मैं समाज तुल जवा है, कि साहब कराए कनाकन प्रणास है, बस तुल निवास है, कि सर्व लगवान है, मे सुख रवान है, तमाम उमीद है, समाज तुल जी है, पारंग परमेश है, समाज तुल जी है, देसर देख है, मेसर देख है, जिमिनो जमा है, मे कुल माँ है, गरीबल कुमार है, कि जरूर जमा है।

तुम्हारी आशा तोर भजन की रहे प्रयासा तुम्हें झाड़ की अवर न क्या जबर चाहो तुम के पाम सेव कसे थ मारे तारी है जन जन सत्र मारे मारी है या बहा जन जय बने करता से बरे पूजो सदा हमारे बचाजे रखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दर्शन के हंता तुम जगत हंता काल पाए ब्रह्मा मुगरा काल पाए से जीव करा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जगन काल जो जी सब कियो देवराज ब्रह्मा जो कियो जबन काल सब लोग सवारा नमस्कार है काहे हमारा जबन काल सब जगत बनायो।

निरंकार निर्विकार निर्लंब आदि नील नाद संभुचार को प्रेरण पावन अनुमान महामूर्त न जानते महादेव तो कह सदा से वो निरंकार का जीवन बनाते वो आप अपनी बुद्ध है जी तीन बार।

राम कली महला तीजा नंद ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी लाए सतगुरु माताया सतगुर का पाया साहब से जी मन वजिया बजाइया राज रतन परिवार करिया शब्द गावने आईया शब्द तन गाव हरी केरा मन ने बसाया कह राम कर सतगुरु माताया हे मन मेरे तू सवर हो हरनाली हर नाम रहो तू मन मेरे दूख सब दुसार अंगीकार पर तेरा आकार सब सवार सबना गला समर्थ स्वामी सो के मनोज सारे कहे रानक मन मेरे सवर हो हरनाले साचे साहेबा क्या नहीं करते रहे करता तेरे सब किसाए जिस दे सो पावे सदा सिरत सभा तेरे नाम मन वसावे नाम जिनका मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सचे साहिब क्या नहीं कर

छोटी सी उम्र है, अब भी सोते हैं, जल में सोते हैं, पर भगत का कुछ ना बिगड़े, क्योंकि

गुण के पिछले की जरूरत ना रहे। सत्संग आज तुम सारे अरदास करो। सरदार लैंबर सिंह जी ने आज अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया है और मना रहे हैं। अरदास करिए बच्चा अपने धर्म का अपने पंथ का कोई ऐसा कम सवारे यदि ध्रुव वन अटल हो जाए। गुरु कृपा कर आओ आखिरी पंक्ति शब्द से घर सुख वसया बाहर सुख पाया तो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया। संता योग हो आपकी निश्रिया सच दीवार का कीर्तन श्रवण कीते आओ सारे पढ़ो।

सब ज्ञान सब ध्यान हर शास्त्र सिमरत वखयान योग अभ्यास कर्म त्रम किरिया सगल त्याग बन मध्ये फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रतना शरीर कटाय होमे कर राति वर्तनेम करे बहु भांति नहीं पुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे जिर जीव महापुदास तपी सरथी वै अग्न माहे होमत पुराण कनक असव हैवर भूमदान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावै तो भी होमै मैल ना जावै हर के नाम समसर काशनाए नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ देह छुट्टै गर्भ मान न मन ते हुट्टै सोच करे दिन सर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करे मन ते कबू न बिखिया करे जल धोवै बहु देह अनीत शुद्ध कहा होए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहु मूच बहुत सियाणप जम का बहु व्यापै अनक जतन कर तृष्णा न त्रापै एक अनेक अगण नहीं बुझै कोट उपाव दरगह नहीं सिजै छूट सनाही उप पयाल मोहे व्यापह माया जाल अवर करतूत सगली जम डानै गोविंद भजन बिन चल नहीं मानै हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोलै सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मांगै सात जना की सेवा लागै जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सदगावै जे को अपनी शोभा लोरै साध संग एह होमै शोरै जे को जन्म मरण ते डरै सात जना की सरणी परै जिस जन को प्रभ दर्स प्यासा नानक ताकै बल बल जासा सगल पुरख मह पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान आपस को जो जानै नीचा सो गनियै सब ते ऊंचा जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना देखै सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन समदृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा निर्धन कौ तन ते रो नाओ निथावे कौ नाओ तेरा थाओ निमाने कौ प्रभ तेरो मान सगल कटा कौ देव अवदान करन करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जानहो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उत्तर तुम ते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मर कर्म सगल किरिया मह उत्तम किरिया साध संग दुरमत मल हिरिया सगल उद्यम मह उद्यम पहला हर का नाम जपहु जी सदा सगल बाणी मह अमृत बाणी हर को जास सोन रसन बखानी सगल थान ते ओह उत्तम थान नानक जे घट वसै हर नाम सलोक निर्गुण यार ए आनिया सो प्रभ सदा संभाल जिन किया ते सचीत रख नानक निभि नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार सिगारिया गर्भ अग्न मह जिन्ह उबारिया बार व्यवस्था तुझ प्यार दूध हर जोबन भोजन सुख सूद बिरध पहया ऊपर साक सैन मुखी अपियाओ बैठ कौ दैन इहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्स लेहो तौ नानक सीजै ये प्रसाद तहर ऊपर सुख बसह सुत प्रहात मीत बनता संग हसह ये प्रसाद पीवह शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमुला यह प्रसाद भोगह सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा धीने हाथ पाव करण नेत्र रसना तिसह त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूढ़ अंध व्यापे नानक काट लेहो प्रभ आपे आद अंत जो राखन हार तिस स्यों प्रीत न करै गवार जाकी सेवा नवनित पावै ता स्यों मूढ़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावै दरगह मान तिसह बिसारै मुग्ध अजान सदा सदा इहो भूलण हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै साज छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो आथिर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन लेप उतारै तो होए गर्द विपरीत भस्म संग होए
अंधकूप मह पतत विकराल नानक काढ़ लेहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करै दिन रात बाहर बेख अंतर मल माया शब्द नाहे कश करै छुपाया बाहर ज्ञान ध्यान इसनान अंतर व्यापै लोभ सोआन अंतर अगन बाहर तन सुआह गल पाथर कैसे तरह अथाह जाकै अंतर बसै प्रभयाप नानक ते जन सह जिस मात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कार गह लेहो ओट निभावै कहा बुझारत बूझै डोरा निस्कहियै तौ समझै पोरा कहा विष्ण पद गावै गोंग जतन करै तौ पिही सुर भंगै कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं होत ऊहा उत गवन करतार करणामय दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाई सो आवै ना चीत जो बैराई ता त्यों प्रीत बलुआ के गृह भीतर बसै आनंद केल माया रंग रसै दीर्घ कर मानै मनह प्रतीत काल में आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बेकार महा लोभ द्रोह सियाहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लेहो आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पहे अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बालक तेरे तुमरी कृपा मह सूख कन्हेरे कोय न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी सलोक देन हार प्रभ छोड़ कै लागह आन सो आए नानक कहू न सी जाई बिन नावै पात जाए अष्टपदी दस बातु ले पाशै पावै एक बस्त कारण विखोट गवावै एक भी न दे दस भी हिर ले तो मूड़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर स्यो नाही चारा ताको की जय सत नमस्कार जाकै मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहू मन मूठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगनत साहो अपनी देरास खात पीत बरतै आनंद उलास अपनी अमान कश बाहुर साहो ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवै बहुर उसका विश्वास ना होवै जिसकी बस तिस आगै राखै प्रभ की आज्ञा मानै माथै उसते चौगुण करै निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक पहांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिरख की छाया स्यों रंग लावै ओह बिनसै ओह मन पछतावै जो दीसै सो चालन हार लवट रहो तह अंध अंधार बटाऊ स्यों जो लावै नेह ताको हाथ न आवै केह मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई मिथिया तान तान कुटंब सबाया मिथिया होमै ममता माया मिथिया राज जोबन तन माल मिथिया काम क्रोध विकराल मिथिया रथ हस्ती असव वस्त्रा मिथिया रंग संग माया पेख हस्ता मिथिया त्रोह मोह अभिमान मिथिया आपस ऊपर करत गुमान आसिर भगत साध की शरण नानक जब जब जीवै हर के चरण मिथिया श्रवण पर निंदा सुनह मिथिया हाथ पर दर्भ को हिरह मिथिया नेत्र पेखत पर त्रय रूपाद मिथिया रसना भोजन अनुस्वार मिथिया चरण पर विकार कौ धाव है मिथिया मान पर लोभ लुभाव है मिथिया तान नहीं पर उपकार मिथिया बास लेत बेकार दिन बूझे मिथिया सब पहे सफल देह नानक हर हर नाम लाए बिरथी साक्त की आरजा साज बिना कहे होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ताके दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय मेघ बिना ज्यों खेती जाय गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यों किरपन के निरार्थ दाम तहन तहन ते जान जे घट बस्यो हर नाव नानक ताके बल बल जाओ रहत अवर कश अवर कुमावत मन नहीं प्रीत मुखों गंढ लावत जानन हार प्रभु परबीन बाहर भेख न काहू पहीन अवर उपदेसै आप न करै आवत जावत जन्मै मरै जिसकै अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरै संसार जो तुम पहने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै अपना किया आप मानै
ਆਪਹਿ ਆਪ ਆਪ ਕਰਤਨ ਵੀਰਾ ਕਿਸੈ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ ਉਪਾਵ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸਭ ਕਛ ਜਾਣੈ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿਤ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲੈ ਲੜ ਲਾਏ ਥਨ ਤਨੰਤਰ ਰਹਿ ਆਸਮਾਏ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਤ ਕਿਰਪਾ ਕਾਰੀ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ਸਲੋਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅਹੇਵ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨ ਲਾਵਹਿ ਤਿਸ ਕਉ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵਹਿ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸਹਿ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਤਨਾ ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰਹੁ ਤਿਸ ਰਸਨਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹਡਾਵਹਿ ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗ ਕਦ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵਹਿ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈਐ ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਕਾ ਜਸ ਗਾਵੀਜੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ ਮੁਖ ਤਾਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪਾਵਹਿ ਨਾਨਕ ਪਾਪੇ ਤੀ ਘਰ ਜਾਵਹਿ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਲਿਵ ਲਾਵਹੁ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ ਮਾਨ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿੱਦਰ ਢਾਕੇ ਮਾਨ ਸਰਣੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨ ਪਹੁੰਚੈ ਮਾਨ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਊਚੇ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਹਨ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਭੂਖਣ ਪਹਿਰੀਜੈ ਮਾਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉ ਆਲ ਸਕੀਜੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵ ਹਸਤ ਅਸਵਾਰੀ ਮਾਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਕਬਹੂ ਨਾ ਬਿਸਾਰੀ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਤਹਨਾ ਰਾਖ ਪ੍ਰੋਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਣਤ ਬਨਾਈ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸਦ ਸਹਿ ਧਿਆਈ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਏ ਜੋ ਏਕ ਅਲਖੈ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਹਿ ਪੁੰਨ ਬਹੁਦਾਨ ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਾਸ ਸਾਸ ਚਿਤਾਰੀ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਹੁ ਸਦਾ ਅਨੂਪ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹਿ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹਿ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨਹਿ ਕਰਨ ਨਾਦ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖਹਿ ਬਿਸਮਾਰ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਸਨਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚੱਲਹਿ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵਹਿ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਹਿ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗਹੁ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗਹੁ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਮੂਲ ਨ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾ ਕਉ ਜਾਪ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਤਿਸਹਿ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚ ਅਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਸਿਉ ਰਾਚ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ ਆਪ ਗਾਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਊਤਮ ਹੋਏ ਸਰਬਿਨ ਦਹਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਆਪਹੁ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨਹੂ ਲਇਆ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤ ਲੱਗਹਿ ਹਰ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹਾਥ ਸਲੋਕ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਤ ਜਣਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸਤਪਦੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੋ ਗਿਆਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬੁੱਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੀਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਵੇਰਾ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਉਪਰ ਜਤਨ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪਰਾਨੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਆਵਹਿ ਬਸ ਪੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ
साध संग होए तब की रेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कतहुं तावै, साध संग आस्थित मन पावै, साध के संग माया ते पिहन, साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु के संग महापुनीत, साध संग किस सिउ नहीं बैर, साध के संग न बीगा पैर, साध के संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध के संग नाही होताप, साध के संग तजै सब आप, आपे जाने साध बदाई, नानक साध प्रभु बाने आई, साध के संग न कबहू तहावै, साध के संग सदा सुख पावै, साध संग बस अगोचर लहै, साधु के संग अजर सहै, साध के संग बसै थान ऊचै, साधु के संग महल पहुचै, साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म, साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान, साध के संग सब कुल उधार, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार, साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सरब थान गम, नानक साध कै संग सफल जनम, साध कै संग नहीं कट कहाल, दर्शन भेट तो होत निहाल, साध कै संग कलूखत हरै, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग ईहा ऊहा सुहेला, साध संग बिशरत हर मेला, जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग ना बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध हृद बसै, नानक उदरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनौ हर नाउ, साध संग हर के गुण गाउ, साध कै संग ना मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा, साध संग भय आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पिहटे संजोग, साध की महिमा भेद ना जानना है, जेता सुना है तेता बखियाना है, साध की उपमा त्यो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई, सलोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पीखै एक सभिन कोए, नानक यह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अष्टपदे ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जलम है कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौ शोख, ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंक कौ लागै तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, ज्यो बसदा कोऊ खोदै कोऊ चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का इह गुनाउ, नानक ज्यो पावक का सहज सुभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल ना लागै जला, ब्रह्म ज्ञानी कै मान होए परगास, जैसे तर ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपना है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे, नानक जिन प्रभ आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रास ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी से काश बुरा ना पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युक्ता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म त्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी सुमाह, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो पहला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदहार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै एकै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अंबुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मान परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कार सदा आनंद,
ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिस्सा। ब्रह्म ज्ञानी का होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे पर्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्स बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए। ब्रह्म ज्ञानी को खोज है महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए अदाक्षर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सार जीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जीव का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का दास, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा

0: रहो, हो बहु भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस राखो मन माहि, सर्वरूप नानक मिट जाहि, जिस तन कौ चार कुंट उठ ताव है, सो तन हर सेवा ते पाव है, जिस सुख कौ नित बाश है मीत, सो सुख साधु संग परीत, जिस शोभा कौ करह परी करनी, सा शोभा भज हर की सरणी, अनक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर अवखद लाए, सर्व निधान में है हर नाम निधान, जप नानक दरगह परवान, मन प्रबुद्ध हो हर कह नाय, दहत तावत आवै ठाय, ताको विघ्न न लागै कोय, जाकै हृदय बसै हर सोय, कल ताती ठाडा हर नाउ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पहो बिनसै पूर्ण होय आस, भगत पहाए आत्म परगास, इत घर जाए बसै अविनाशी, कहो नानक काटी जम फासे, तत विचार कह जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा, आवा गवन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग सरण गुरदेव, इं रतन जन्म का होए उदहार, हर हर सिमर प्राण आधार, अनक उपाव ना छूटन हारे, सिमरत सास्त वेद विचार, हर की भगत करहो मन लाए, मन वंशत नानक फल पाए, संग न चालस तेरै तहना, तू क्या लपटाव है मूर्ख माना, सोत मीत कुटंब आर बनता, इनते कहो तुम कवन सनाथा, राज रंग माया विस्तार, इनते कहो कवन छुटकार, अस हस्ती रात असवारी, झूठा डंफ झूठ पासारी, जिन दिए इस बुझै ना बेगाना, नौंग सार नानक पछताना, गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने, हर की भगत करहो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल बिख जाहे, आप जपहो अवरा नाम जपावहो, सुनत कहत रहत गत पावहो, सार भूत सत हर को नाओ, सहज सुभाए नानक गुण गाओ, गुण गावत तेरी उत्तर समैल, बिनस जाए होमै बिख फैल, होहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम समाल, छाड़ से आनप सगली मना, साध संग पावह सच तहना, हर कुंजी संच करहु व्योहार, ईहा सुख दरगह जयकार, सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाकै मस्तक लेख, एको जप एको साला आहे, एक सिमर एको मन आहे, एक के गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत, एको एक एक हरि आप, पूर्ण पूर रहो प्रभ व्याप, अनक विस्तार एक ते पहे, एक आराध पराशत गए, मन तन अंतर एक प्रभ राता, गुर प्रसाद नानक एक जाता, सलोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तौ शरणाए, नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए, अष्टपदी जाचक जान जाचै प्रभ दान, कर कृपा देवहु हर नाम, सात जना की मांगो तुहूर, पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर, सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुमह त्यावो, चरण कमल स्यों लागै प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत, एक ओट एको आधार, नानक मांगै नाम प्रभ सार, प्रभ की दृष्ट महासुख होय, हर रस पावै बिरला कोय, जिन चाखिया से जन तृप्ताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने, सुपर परे प्रेम रस रंग, उपजै चाओ साध कै संग, परे सरण आन सब त्याग, अंतर प्रगास अनदिन लिव लाग, बड़ भागी जपिया प्रभ सोय, नानक नाम रते सुख होय, सेवक की मनसा पूरी पही, सतगुर ते निर्मल मत लाई, जन कौ प्रभ होयो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल, बंधन काट मुक्त जन पहया, जन्म मरण दुख भ्रम गया, किछ कुनी सरदा सब पूरी, रव रहया सतसंग हजूरी, जिसका सा तिन लिया मिलाए, नानक भगती नाम समाए, सो क्यों बिसरै जे काल ना पहनै, सो क्यों बिसरै जे की आ जानै, सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै, सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गांढ़ै, गुर पूरै तत इह बुझाया, प्रभ अपना नानक जन ध्याया, साजन संत करहो इहो काम, आन त्याग जपहो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावहो, आप जपहो अवरह नाम जपावहो, भगत पाए तरिय संसार, बिन भगती तन होसी शार, सर्व कल्याण सुख निद नाम, बूटत जात पाए विश्राम, सगल दुख का होवत नाश, नानक नाम जपहो गुणतास, उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर ही सो आओ नेत्र हो पेख दर्श सुख होय मन बिकसै साध चरण तोय भगत जना कै मन तन रंग बिरला को पावै संग एक बस दीजै कर माया गुर प्रसाद नाम जप लयन ताकि उपमा कही ना जाय नानक रहया सर्ब समाय प्रभ बखसंद दीन दयार भगत वशल सदा किरपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपार आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पहाय लावै मन हीत हम निर्गुण यार नीच आजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोग पाए एक निमख हर के गुण गाय अनक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पहाई बहु भोजन कापर संगीत रचना जपती हर हर नीत भली सुकरणी शोभा धनवंत हृदय बसै पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक परगास सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब आकार इहो काशना दृष्टेता पाप पुन तब कहते होता जब तहारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस सांग कमात जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हर्ष सोग कहो किस है व्यापत जब आपने आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत भरम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करना है हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तहनी तब बांत मुक्त कहो किस कहो गानी जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाय तब शिव सकत कहो कित ठाय जब आप है आप अपनी जोत तहरै तब कवन निडार कवन कत डारै आपन चलत आप करना हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहां विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोय तब जम की त्रास कहो किस होय जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपन आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपर जान जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौ मान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह शल छिद्र लगत कहो कीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समाव तह कह भूख कवन तृप्ताव करन करावन करन हार नानक करते का नाहि सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पहाई जह सर्व कला आप है परवीन तह देव कतेव कहा को चीन जब आपन आप और तहर तो सगन अप सगन कहा विचार यह आपन ऊच आपने आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गात जान हो आप जह अशाल अशेद अपेद समाया ऊहा किस व्यापत माया आप कौ आप है आदेश त्यो गुण का नाही परवेश यह एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जह आपन आप पतियारा तह कौन कथा कौन सुनने हार बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा नानक आप कौ आप है पहुचा जह आप रचियो परपंच आकार त्यो गुण मह कीनो बितार पाप पुन तह पही कहावत को नरक को सुर्ग बंशावत आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह भरम पह पहार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की यो बखियान आपन खेल आप कर देख खेल संकोच तो नानक एक जह अवगत भगत तह आप जह पसरे पासार संत प्रताप दो पाख का आप है धनी उनकी शोभा उनहु बनी आप है कौतक कर अनद चोज आप है रस भोगन निर्जोग जिस पहावै तिस आपन लाए लावै जिस पहावै तिस खेल खेलावै बेसुमार अथाह अगंत अतोल ज्यो बुलावहो त्यो नानक दास बोलै सलोक जी जंत के ठाकुर आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह त्रिस्तार अष्टपदी आप कथा आप सुन रहे हार आप है एक आप विस्तार जांच पावे ता सृष्टि उपाय अपने पहाने लय समाए तुम ते भिन्न नहीं किश होए आपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभु जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल सृष्टि का जेता जी जंतर सब ताकै हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखै तिस कोय ना मारे सो मुआ जिस मनहु विसारै तिस ताज अवर कहा को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाकै सब हाथ अंतर बाहर जानहु साथ गुण निदान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार पूर्ण पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत किरपार अपने कर्तव्य जानै आप अंतर जामी रहो बे आप प्रतपाल जीअन बहु भांत जो जो रचियो सुत है त्यात जिस पावै इस लय मिलाए भगत कर है हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करण हार नानक इक जानिया जन लागा हर एक नाए किसकी आस न बिरथी जाए सेवक कौ सेवा बन आई हुक्म बूझ परम पद पाई इसे ऊपर नहीं विचार जाकै मन बसिया निरंकार बंधन तोर पहे निर्वैर अन दिन पूजे गुर के पैर एह लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर पव आप है मेले साध संग मेर करहो आनंद गुण गावो सब परमानंद राम नाम तत करहो विचार दुर्लभ देह का करहो उधार अमृत बचन हर के गुण गाओ तान तरन का यह सुआओ आठ पहर प्रभ पेखो नेरा हृदय अज्ञान बिनसै अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन इशे नानक फल पावो हलत पलत दोए लेहो सवार राम नाम अंतर उर तहार पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसै तिस साच परीखिया मन तन नाम जपहो लिव लाए दुख दर्द मन ते पहो जाए सच वापार करहो वापारी दरगह निबह खेप तुमारी एका टेक रखो मन माहे नानक बहुर न आवह जाहे इससे दूर कहा को जाए उबरे राखन हार ते आए निरपहो जपै सगल पहो मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुट्टै जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटै अहंकार इस जान को कोई न पहुचन हार सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कार्य पूरन मत पूई अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेख तो उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके आनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सो होत निहार ताकै निकट न आवत कार अमर पहे अमरा पद पाया साध सांग नानक हर ध्याया सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाशन हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एकत घट माहे अनक रंग नाना दृष्टाहे नौनिध अमृत प्रभ का नाम देही मह किसका विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कहन न जाई अचरज विस्माद तिन देखिया जिस आप दिखाए नानक तेस जान सोजी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहया भगवंत तरन माहे आकाश पायार सर्वलोक पूर्ण प्रतपार बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंत दह दिसे समाहे तिसते तिहन नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमरत मह देख ससियल सूर नक्षत्र मह एक बाणी प्रभ की सब को बोलै आप अडोल ना कबहू डोलै सर्व कलाकार खेलै खेल मोड़ ना पाइया गुण है अमोल सर्व ज्योत मह जाति ज्योत धार रहो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन मह इहो विसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुन है शुभ वचन सर्व व्यापी राम संग रजन जिन जाता इसकी एह रहत सत वचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख मानै करन करावन हार प्रभ जानै अंतर बसे बाहर भी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पात ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਏਕੰਕਾਰ। ਅਨਕ ਕਲਾ ਲਭੀ ਨਹਿ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਕਵਨ ਨਿਕਟ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰ, ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਭਰਪੂਰ। ਅੰਤਰਗਾਤ ਜਿਸ ਆਪ ਜਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਆਪ ਬੁਝਾਏ। ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਵਰਤਾਰ, ਸਰਬ ਨੈਨ ਆਪ ਪੇਖਣਹਾਰ। ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨ, ਆਪਣ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣੈ। ਆਵਨ ਜਾਨ ਇੱਕ ਹੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ। ਸਭ ਕਹਿ ਮਦ ਅਲਿਪਤੋ ਰਹਿ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਹਿਣ। ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਸਮਾਏ। ਇਸਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਨਾਹੀ ਬੁਰਾ, ਓਰੈ ਕਹੋ ਕਿਨੈ ਕਛ ਕਰਨ। ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤ ਯਤਨੀਕੀ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ। ਆਪ ਸਾਚ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚ, ਓਤ ਪੋਤ ਆਪਣ ਸੰਗ ਰਾਚ। ਤਾਂ ਕਿ ਗਤ ਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਪਾਏ। ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪਰਵਾਨ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਾਣ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਇਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ। ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਲੋਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ। ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਅਸਪਦੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਣੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇਖ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰਹੁ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਆਸ ਅਨੇਕ ਤਿਆਗਹੁ ਤਰੰਗ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਰ ਮਨ ਮੰਗ। ਆਪ ਛੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਹੁ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰਹੁ। ਹਰ ਧਨ ਕੇ ਭਰ ਲੇ ਹੋ ਭੰਡਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਨਰਕ ਨਿਵਾਰ ਉਧਾਰਹੁ ਜੀਓ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਓ। ਚਿਤ ਚਿਤਵਹੁ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ, ਏਕ ਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ। ਗੋਪਾਲ ਦਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਕਾ ਇਹ ਅਧਾਰ। ਉੱਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ, ਅਮਲੀਕ ਲਾਲ ਇਹ ਰਤਨ। ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ, ਆਪ ਤਰੈ ਲੋਕ ਹੈ ਨਿਤਤਾਰ। ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸਫਲਤਾ ਕਾ ਸੰਗ, ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਰੰਗ। ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜੈ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਅਨੰਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਗਾਜੈ। ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਮਹਾਂਤ ਕੈ ਮਾਤੇ, ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸਾਤੇ। ਸਰਨ ਯੋਗ ਸੁਨ ਸਰਣੀ ਆਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਮਿਟ ਗਏ ਬੈਰ ਭਏ ਸਬਰੇਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਲੈਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇਵ, ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵ। ਆਲ ਜਿੰਜਾਲ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਰਹਿਤੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਨ ਰਸਨਾ ਕਹਿਤੇ। ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਤਹਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਤ ਹਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਿਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੋ ਹੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਨ। ਸਰਬ ਇੱਛਾ ਤਾਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਲੋਏ। ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਵਨ ਜਾਨ। ਹਰ ਧਨ ਖਾਟ ਚੱਲੈ ਜਨ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਖੇਮ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਤ ਨਵ ਨਿਤ, ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬਤਹ ਸਿੱਧ। ਵਿਦਿਆ ਤਪ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ ਉਤਮ ਇਸਨਾਨ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਭ ਕੈ ਮੱਧ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ। ਸੁੰਦਰ ਚਤਰ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ, ਸਮਦਰਸੀ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ। ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖ ਭਣੇ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਚਨ ਮਨ ਸੁਣੇ। ਇਹੋ ਨਿਧਾਨ ਜਪੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਸਭ ਜੁਗਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨ ਬਾਣੀ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਬਖਾਣੀ। ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਹਰ ਨਾਮ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ। ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟੈ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਮ ਤੇ ਛੁੱਟੈ। ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ, ਸਾਧ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ। ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੁਣੈ ਲਾਏ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾ ਕਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰ, ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰ। ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਏਕ ਨਾਮ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸੁਮਾਨੀ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਬਿਨਸੇ ਭੈ ਭਰਮ, ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲਤਾ ਕੇ ਕਰਮ। ਸਭ ਤੇ ਊਚਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖ ਮਾਣੀ। ਸਭ ਤੇ ਊਚਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖ ਮਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: ਕੇਲਬੋ ਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FM ਰੇਡੀਓ CISK 94.3 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮ ਸਲੇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3074 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3075।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

दातार सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सोभाए नाम गुरु सवारी सतसंगी जनों हजूर दे अमृत बचना का कीर्तन आप जी ने गुरु सवारियां पासों सगन किया है। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह हजूर दी सिफत विच राय बलवंत जी वालों उचारण किए थे बचना की विचार कल आप कर रहे राय बलवंत साहब जी ने कल के बचना विच असानू यह गल बिरद कराई कि धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने भाई लहना साहब जी के शीर उत्ते रूहानियत का शत्र रख दिता। भाई लहना साहब उस परम पिता परमेश्वर के नाम अमृत नूं पी रहे सन ते गुरु नानक साहब कृपालू जी ने अपनी सिख भाई लहना जी के चरणों विच मत्था टेक के अपनी हयाती विच अपने जीवन विच जिउंदे जी उन्हां नूं गुरु थाप दिता अपनी जोत उन्हां दे विच टिका दिती। अज जो दूसरी पौड़ी है इस दियां कुछ तुकां आपां आधार बनाईआं क्योंकि इस पौड़ी दी विचार दो दिनों में संपूर्ण होगी। अज राय बलवंत साहब ने कहा कि जेड़ी खत्ती धन गुरु नानक साहब ने खत्ती थी जेड़ी कमाई गुरु नानक साहब कृपालू जी ने की थी है उस कमाई की बरकत नाल बाबा लहना साहब जी दियां चार चुफेरे धुमा पै गई हैं। जोत गुरु नानक साहब वाली है ते जिंदगी जीन की जिहड़ी जुगत है उहदे विच कोई भी बदलाव नहीं। जोत भी होवे ते जिंदगी जीन का जिहड़ा ढंग है रूहानियत कमाण का ढंग भी हो है। गुरु नानक साहब जी ने गुरु अंगद साहब बना के पाई लैने तो उन्हां दे सिर उपर निरंजनी शस्त्र चला दिता है ते गुरु नानक साहब की शक्ति से उन्हां दे खजाने से धन गुरु अंगद साहब कृपालू जी विराजमान हो गए। गुरु नानक की शक्ति से बैठे हुए गुरु अंगद साहब अपने वालों दोनों हथां दे नाल दबा दब जेड़ा भी इन्हां दे दर ते हुंदा है ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਛੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧੁਰ ਖਤਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਵਰਤੀਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਦੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ आओ करो कृपालता। आप जी जितने भी कृपालु सतगुरु जी की चरण शरण विच इकत्र होए हो यत्न करिए अपने अंदर नूं टिकाउण दा। सतगुरु गुरु नानक साहिब आप विच वरतन इस अमृत बचन की विचार आप ही एकाग्रता बख्श के करा लैण।
साथ संगत आप जी बख्शो आशीष और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी करो कृपालता।

तीन धर्म जब भक्त न कीनी हो अब मान टेढ सगरी अमर जान संचिए काया अमर जान संचिए काया ए मिथ्या काची गगरी ए मिथ्या काची गगरी।

इसकी भाव भगत नहीं सादी। गोविंद हम ऐसे अपराधी, गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभ जी यो पिंड सा दिया, सिद्धी भाव भगत ने सादी। पर धन पर तन पर तीन निंदा पर अपवाद न छूटे, जिंदगी गुनाहां दे अते अवगुणा दियां लहरां दे विच गुम हुंदी जा रही। मानुख दी प्रीति थले गिरियां हुई चीजां नाल, धरती वाले पासे जड़ी चीज गिरी होवेगी उस पासे प्रीति है मानुख दी। डिगी हुई चीज नु चुक के देखना फिर सिटना एदा कर्म है, सुभाव है। धरती ते पई हुई चीज चुक लैंदा, चुकन तो बाद वेखदा चंगी नी फिर गिरा दिंदा। सतगुरु कहंदे बस सारी जिंदगी इसे तरह ही लंघ गई, किसी नु चुक लैंदा किसी नु छड़ दिंदा, चुकदा फिर त्याग दिंदा, इसे तरह ही सारी जिंदगी। सतगुरु कहंदे गोबिंद हम ऐसे अपराधी, असी ऐसे अपराध मान अपराधी, अपर अराधी दूजियां दी आराधना करने वाले अपराधी, जिंदगी दे अंदर अपराध ही अपराध हो जाने, अवगण ही अवगण इकट्ठे हो जाने। जिस परमात्मा ने इस शरीर नु जन्म दिता है, जिसने अपना रूप दे दिता है, उसकी तां भगती कीती ने। जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, जिसकी पहो भगत नहीं साधी। पर साडियां प्रीतां साडे प्यार केड़ी चीज नाल ने, शब्द फरमान कर रहा है हजूर जी दा। पर तन पर

गमन होत है पुन पुन पर संग न छूट ये कर कथा होत हर संतन यह कर कथा होत हर संतन एक निमक नम

धन किसे नाल ही प्रीति इकट्ठा करते चले जाइए। अक्षर बड़े साफ ने, बहुत सुंदर अक्षर ने, पर मनुख सुन के भज जाता है, कहता ये मैं नहीं सुनने। सतगुरु कहते ना सुन, साडा काम तो सुनाना, किन्ना क भज लेंगा। हर एक जगह से गुरुद्वारा, हर एक जगह से रब का मंदिर, हरेक जगह तो आवाज आएगी, एहो जी की आएगी, डिफरेंट हो जाएगा, भाव ओदा अलग होएगा, पर हकीकत तैनू देन वास्ते ये शब्दां दा प्रचार हुंदा ही रहेगा। अकाल पुरख महाराज जी की बाणी का प्रचार हुंदा ही रहेगा। किन्ना क भज लेंगे, पराया तन पराया धन, पराई निंदा पर अपवाद, ये आवागमन ने दिन दे, हर रोज दे आवागमन ने गुण अवगण ने। सतगुरु कहंदे ये तां दिने भी अवगण कमांदा, रात नूं भी अवगण कमांदा, फुरमान करदे कहंदे ने।

सहंस शिप्त सलाहन छट के कुरंगी लगा हट पिया होवे ना सुक्का हट मरे हुए पशु दा बहुत समा पहला कुछ डंगर मर गया ना यो हट दे अंदर ना ते रत रह जांदी ना मास रह जांदा पर कुत्ते घूमदे घुमांदे उस पासे चले जांदे ने हड नू मुंह पा लैंदे ने हड्डी नू चूसदे ने चक मारदे ने मुंह दे विचों खून निकलदा उसे खून नू वार वार हड्डियां दे नाल चटदे ते कहंदे ए रस इत्थे दई है छटदे ही नहीं छटदे नहीं त्यागदे नहीं सतगुरु कहंदे ऐसा अवगण जिंदगी दा सौ उलामे जिने के जिन दे सौ उलामे मिलदे ने कदे जीवन दे विच ए वेख लियो वी कोई मनुख तुहाडे कोलों खुश होया साडे कोलों खुश होया ये ते खुश हो गया अज बड़ा वड्डा कर्म हो गया जे वो खुश होया ना कुछ लैण वास्ते ते कहेगा वाह जी वाह तुहाडे वर्गा ते महाराज कोई नहीं आपां कुछ दिता फिर ते किसे गल करके न्यौंदा जे आपां कख भी नहीं दिता ते इन्नी गल कहिंदा बस तुहानू वेख के तुहानू मिल के बड़ी शांति मिली है इहदा मतलब अज दिन सफल है गुलामा नहीं मिलिया ते जे वो निमदा पे अपने आप नू कुछ लैण वास्ते तां फिर समझो ये लैण वाला भिखारी इस टाइम मैं देने वाला दाता इस करके मेरे को निभदा पे कदे तां जिंदगी दे अंदर ऐसे दिन आने चाहिए ने जदों कोई मनुख सामने आके कहे वाह जी तुहाडे हर रोज दर्शन करने आ जीवन तब्दील हो गया जिंदगी दे अंदर रस आ गया जे घर दे अंदर परिवार दे अंदर रस ना आवे ते कहिए गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का स्वरूप घर है गुरु घर होवे गुरु का घर विच वासा होवे केवल घर के अंदर जिहड़े बाहरली स्ट्रक्चर है ना ये बनाई हुई बिल्डिंग के अंदर गुरु का वास है साडे हिरदे विच है देखना तो यह है वो हिरदे दे विच वसिया कि नहीं वसिया ये कल्ले बनाए हुए फ्रेम के अंदर है असीं घर बनाता रूम बना दिता बस नित कर्म अनुसार पूजा होने लग पई पर वो अंदर नहीं गया वो बाहर ही रह गया अखां तो बाहरले पासे ही रह गया अंदर ते आया ही नहीं ते फिर कोसीए जिंदगी नूं सतगुरु कहंदे तेरा जीवन तां अंदर लै गुरसिख दी जिंदगी ते अंदरों शुरू हुंदी है दुनिया दी जिंदगी बाहरों शुरू हुंदी है जे तां जगत दा व्यापार करना ते बाहरों जिंदगी शुरू करो किसे दे नाल जाके व्यापार दी गल्लां बातां करो कोई चंगे पढ़िया लिखिया दे नाल बह के कोई सजेशन लै लो कोई सलाह लै लो सलाहकार बिठा लो कोई ए वेख लो भी किवें नफा नुकसान होना पर जदों अकेलियां पैणा अंदरली जिंदगी शुरू करनी है किसे कोल बहण दी लोड़ ही नहीं अंदरों आपे ही आवाजां आउणगियां मैं बड़ी परेशान हां मैं बड़ी परेशान अंदरों आपे आवाजां आउणगियां कि जिंद बड़ी परेशान है जिंद तड़फती पई है भुखी मर रही है मनुख बहिंदा चौंकड़ी मार के अग लगी हुई अंदर भांबड़ मचे पए ने खैबड़ मची पई है कोई इधरों ख्याल कोई इधरों ख्याल शांति नहीं शांति है ही नहीं कमाल की बात सतगुरु गुरु रामदास महाराज पातशाह आप जी वे कुछ एहो जी गल फरमान कर दे श्लोक वारा ते वधीक पहुंचिए गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र शब्द के विचार